एक बार तो फिर बहुत ही प्यार भरी निघी सत श्री अकाल। जिथे भी तुसी इस वेले सानू सुन रहे हो, मेलबर्न दी सड़कों उत्ते काम वल जांदे हुए, किचन विच बच्चों लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए, तो जिहड़े बच्चे स्कूल यूँ नहीं जाने वाले ने उन्होंने लंच बॉक्स तैयार करते हुए, किसी फैक्ट्री की शिफ्ट शुरू करन तो पहला या फिर ट्रक विच, टैक्सी विच, ऑफिस विच, या फिर हो सकता है कि अज घर विच ही चाह दा कप लैके कुछ पल अपने लिए बैठे होवो, तुहाडा सारयां दा दिलों स्वागत। ते मैं हाँ तुहाडी अपनी दोस्त ते होस्ट शमा पंगू। अगले दो घंटियां लिए आपां इकट्ठे होवांगे, यानी कि प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा। ते अज दी सवेर दी शुरुआत मैं एक बहुत ही सधारण जे सवाल नाल करना चाहुंदी हाँ। तुसी अज सवेरे उठे हो, पर की तुहाडा मन भी तुहाडे नाल उठिया या नहीं उठिया? क्योंकि कई बार शरीर तो उठ जाता है, अलार्म बंद कर दिता जाता है, चाह भी बन जाती है, बच्चे तैयार हो गए तो गड्डी स्टार्ट हो गई, काम शुरू हो गया, पर मन अजे भी कल दी किसे गल विच फसिया होया हुंदा, किसे दी कही हुई गल, किसे बिल दी चिंता, किसे रिलेशनशिप का टेंशन, ते या फिर घर दी रिस्पोंसिबिलिटी, बिजनेस दी प्रॉब्लम, मॉर्गेज, बच्चों का फ्यूचर, पेरेंट्स दी हेल्थ, ते इमीग्रेंट लाइफ विच, ते ए लिस्ट कई वारी मुकदी हुई नहीं। असी एक देश तो दूसरे देश विच आ गए, घर बनाए, करियर बनाए, बच्चों नू सैटल किया, ते कईयां ने जीरो तो बिजनेस शुरू कर दिते ते मल्टी मिलियनर्स बन गए। पर इस सारी दौड़ विच कई वारी एक चीज़ पिछे रह जाती है, ते ओ चीज़ की हुंदी है कि तुसी गैस कर लिया कि हले नहीं गैस किया, उड़ीक कर रहे हो कि मैं ही दसा? हाँ जी, इस दे बारे जरूर आपां गल करांगे कि ओ केड़ी चीज़ पिछे रह जाती है। पर हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत एक शब्द के नाल।

होकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला। इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।